0: ஒலித்தந்த பாடலோடு நிறைவு பெறுவது திரைகானம் நிகழ்ச்சி. இன்னும் சில நொடிகளில் ரவிவாசிரி அகில் பாரதிய சங்கீத் சபா இசை நிகழ்ச்சி டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: ये आकाशवाणी है. रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आज रात प्रस्तुत है सितार वादन. कलाकार हैं पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य. जाने माने संगीतज्ञों वाली विशिष्ट परिवार में जन्मे पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य के दादा श्री लाल मोहन भट्टाचार्य जाने माने सितार वादक थे, जिन्होंने इस सांगीतिक विरासत की नींव रखी. अपने पिता श्री गंगा शंकर भट्टाचार्य के मार्गदर्शन में पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य ने शुरुआती तालीम हासिल की. आगे चलकर आपको विष्णुपुर घराना के श्री मुरलीधर ठाकुर से सीखने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ. 1968 में पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य उस समय के बम्बई यानी मुंबई रवाना हुए. आपने वहां बीनकार शैली के लिए प्रसिद्ध इंदौर घराने के प्रवाद प्रतिम सितार वादक पद्मभूषण उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खां से सितार वादन सीखना आरंभ किया. आकाशवाणी और दूरदर्शन के शीर्ष श्रेणी के कलाकार पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य की जाफर खानी बाज के तौर पर एक विशिष्ट पहचान है. आपने देश और विदेश के तमाम संगीत समारोहों में अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियां दी हैं. पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR के सूचीबद्ध कलाकार हैं. साथ ही आपको अनगिनत पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है. यही नहीं, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आयोजित अपना उत्सव समारोह में आपने संगीत निर्देशक की भूमिका भी निभाई है. आज रात पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य के साथ तबले पर संगत करेंगे प्रोशांतो दे रॉय.
2: In the Ravivasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha tonight, we present Sitar Recital by Pandit Hara Shankar Bhattacharya. Born in a distinguished musical family of accomplished musicians, where his grandfather, the renowned Sitarya, Sri Lal Mohan Bhattacharya, is said to have laid the foundation of this rich legacy, and Pandit Hara Shankar Bhattacharya stepping into this world of music with initial training under the able guidance of his father, Sri Ganga Shankar Bhattacharya. Further, he also received training from Sri Muralidas Thakur of the Bishnupur Gharana. Later in 1968, Pandit Hara Shankar Bhattacharya moved to Bombay, present-day Mumbai, to undergo intensive talim under the legendary sitar maestro, Padma Bhushan, Ustad

0: सितार वादन के अंतर्गत आप पंडित हर शंकर भट्टाचार्य से राग दरबारी सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग छायानट, जो आप आलाप से शुरू करेंगे। यह बंदिश गत में विलंबित तीन ताल तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: You are listening to Rag Darbari on the sitar by Pandit Harishankar Bhattacharya. He continues with his presentation in Rag Chayanat, which begins in Alap with a composition set to Gat in Vilambit and Drut Tintal.

0: सितार वादन के इस कार्यक्रम में आप राग छाया नट सुन रहे थे। पंडित हरशंकर भट्टाचार्य आज की इस प्रस्तुति का समापन राग जिला काफी के साथ करेंगे। शुरुआत आलाप से होगी और यह बंदिश गत में दीप चंदी, तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: यू आर लिसनिंग टू राग छायानट इन द सितार रिसाइटल। पंडित हरशंकर भट्टाचार्य कंक्लूड्स हिज प्रेजेंटेशन विद राग जिला काफी, बिगिनिंग विद

0: सितार वादन के इस कार्यक्रम में आप पंडित हरोशंकर भट्टाचार्य से राग जिला काफी सुन रहे थे। आपके साथ तबली पर संगत कर रहे थे प्रशांतो दे रॉय।
1: You are listening to Rag Zila Kafi in the sitar recital by Pandit Harishankar Bhattacharya. He was accompanied on the tabla by Prashanto De Roy.
0: इसी के साथ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा आज रात यही संपन्न होती है।
1: And with this, we end tonight's रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा. This program was recorded at the studios of Akashvani, Kolkata.